0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: Soldiers vs. the real soldiers, aka Okang Boy in town, alongside Mr. Diggy.

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के रेवर क्वारो
0: पियम चुन के रेवर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: यूअन लंग यू बिरोटा
1: इटी यूनियो और रेडियो
3: जी

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो